0: स्टुडियो टाइम अहिले 4 बजेको छ।
1: नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी,
2: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई।
3: बलियो, दरिलो र भर पर्दो, युनाइटेड अजोर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड बाइ ट्रस्ट।
4: लक्ष्मी सनराइज बैंक, लक्ष्यमा सँगसँगै।
5: प्रभुमा बीमा गरौ, निर्धक्क रहौ। प्रभु इन्स्योरेन्स, दिनकुनी काठमाडौँ।
6: ग्लोबल आई